0: Sun 107.8 FM.
1: भाइयों और बहनों, आज इधर लिंगम पुण्य के मंदिर बहुत धूमधाम से होने वाला है।

आंखों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।